काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर भिषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जो

का मूड उचारत भेदा जाको भेवना पावत बेदा ताको कृपाहन अनुमानत महामूढ़ कश भेद ना जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह भिव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुय तेती तुमरा लखा न जाहे पसारा के बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कहीं पूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूँ फूल राजा हव बैठा कहूँ सिमट पयो संक्रे कैठा सगरी सृष्टि दिखाय अचंभव आ जुगा स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार आ सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस्तुचव शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवा मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबटारे जो काल को एक बार त्या है ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दुष्ट तन जाहे ने हर हाओ ताके ताप तनक में हर हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छा शब सके न कोई।

सुने गुंग जो याहे सो रसना पावई, सुने मूड चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द भाव निगणत नर के रहाय, और जो याकी एक बार चौपाई को कह, चौपाई संबत सत्रह सहस पणिज अर्ध सहस मुंतीन कह जय, भाद्र सुधी अष्टमी रववारा तीर्थ द्रव ग्रंथ सुधारा, इत श्री चरित्रोपख्याने त्रया चरित्रे मंत्री भूप संवादे, 405 चरित्र समापतम, सत शुभम सत अभजू, दोहरा दा जान करदास पर की जय कृपा अपार, आप हाद राख मोहे मान क्रम बचन विचार, चौपाई मैना ग्रश प्रथम मनाऊ, किशन बिशन कबू नै त्याऊ, कान सुनै पहचान न तिन साओ, लिवलागी मोरी पग इन साओ, महाकार रखवार हमारो, महालो मैं किंकर थारो, अपना जान करो रखवार, बह गह की लाज विचार, अपना जान मुझे प्रत परिया,

आधार साज नाम आधार मेरा जिन भुखां सब गवाइया करसांत सुखमन आए वसिया जिन इच्छा सब हो जाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहाओ जिस दिया ए वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द त घर सभाग है घर सभाग है शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत वास कीते काल कंट कुमारिया तुर गर्म पाया तुत जिन काओ से नाम हर के लागे कह नानक त सुख होवा तित कर अनहद वाजे अणथ सुनावट भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संता पुतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे प्रपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहतूरे मुदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावे जे को पुंचाए तिसका हुए उदारो ए वस्त जी नह जाई नित नित रा गुर धारो तम संसार चरण लग तरिया।

रास मूल अपार राम मूल अमोलो सच घर ढोलो प्रभ पावे ता मुंद भली एक संग हर कै करह रलिया हों पुकारी दार खली।

कोड़ी रात रवांगा। चले गए, सवेर हुई ते आए ते हंकारी दुर्योधन कह लगा वासुदेव तुसी रात चले ते गए पर पछताए हो गए क्योंकि उत्थे ना ते कोई ढंग दा आराम करन लई बिस्तरा सी, सानू पता है उहदी हालत हालात की ने, ना उहदे कोल कोई पदार्थ सन जिहड़े उहने तुहानू खवाए होणगे। मैनू बड़ा इस गल दा अफसोस है भी वासुदेव तुसी साडे वल क्यों नहीं आए। तां कहण लगे राजन, इन्हें कन्न खड़े कीते, वो कहण लगे राजन कौन तुम्हारे आवै, तेरे कोल सब कुछ है पर एक वस्तु इस तरह की है जिहड़ी बिदर कोल ते सी पर तेरे कोल नहीं है। महाराज वो किहड़ी वस्तु है जिहड़ी साडे कोल नहीं, असीं ते राजे हाँ। कहण लगे ऐसो भाओ बिदर को देखियो ओ गरीब मोहे भावै, मैं उहदा बड़ा प्यार वेख्या, उहनू ते जगह नहीं सी मिलदी बिठाण वास्ते, और दुर्योधन तू हैरान होवेगा ना सारी रात वह सुता ना सारी रात मैं सुता, उहदे वर्गा प्यार मैनू तेरे विच नहीं दिसदा। मैं क्यों बेनती कर रहा, सखी हो सहेलड़ी हो मेरा पेर वणजारा राम, हे मेरी सतसंगी सहेलियो मेरा प्यारा राम प्रेम दा वपारी है, प्रेम दा वपारी, वो वपार करदा है, प्रेम वंडदा है, प्रेम देंदा है, बदले विच प्रेम लैंदा है, होर उहदे कोल किसे वस्तु की कमी नहीं है। आखन लगे राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाओ बिदर को देखियो ओ गरीब मोहे पावे। हुण तुसी वेखो भी 40-50-60 किलोमीटर दा पंध कोई पानी पीण वास्ते कर सकदा, जिथे बंदा रहिंदा पानी ते हुंदा ही है, कोई किले दो किले किलोमीटर दी विथ ते पानी हो जाएगा। हजूर डरौली टिके हुए ने गुरु हरगोबिंद साहब, उधर भाई रूपा ते भाई साध दोवें सवेरे घरों पानी दी टिंड लैके जाके जंड नाल टंग देंदे ने ते आप कम करन लग पैंदे ने। शिखर दुपहर दोवें प्यो पुत्र कहन लगे भी त्रेह बड़ी लगी है बापू पानी पीवीए। आखन लगा चल पुत्र पानी पीने, जंड कोल आए टिंड लाई ते उहनू हथ लाया ते बर्फ वर्गा ठंडा पानी, हुण ते बर्फ वर्गा पानी धक्के खांदा उदों लभदा नहीं सी, पानी बड़ा ठंडा। ते एक दूजे वल प्यो पुत्रां ने वेख्या, पुत्र प्यो नू कहन लगा बापू पानी इन्ना ठंडा है इह ते किरे गुरु हरगोबिंद साहब आउण ना ते पहला उहनां नू पानी पियाईए ते फिर असीं पीवीए। आखन लगे गल ते तुसीं ठीक कही है, फिर इस तरह करो अरदास करिए, पहला गुरु हरगोबिंद साहब पानी पीणगे फिर असी पानी पीवांगे। साडा इतिहास कहिंदा दोवें प्यो पुत्र टिंड दे कोल बह के हथ जोड़ के बह गया, हे गुरु हरगोबिंद साहब सचे पातशाह कृपा करो पहुंचो जल छको ते फिर असी जल छकीए। हुण प्यास बड़ी लगी हुई है, शिखर दुपहर है, तत्ती लोह वग रही है, उधर गुरु हरगोबिंद साहब सजे हुए ने अपने सांडू कोल, माता दमोदरी जी की छोटी भैन बीबी रामो डरौली दे रहण वाले महाराज अपने सांडू साहब को टिके हुए सन। उतों हजूर उपड़ वाए उठते ने ते आप ही घोड़े की काठी चुक लेंदे, किसी सिख की नहीं वेट करते, दबा दब घोड़े के उत्ते तारू पा के उत्ते काठी रख के तंग कस के लगाम मूह विच कड़ियाला पा के ते पलाकी मार के उत्ते चढ़ गए, भज के सारे पिछे गए। महाराज की गल है, और नाल ही घोड़े नू अड्डी लाई, घोड़ा हवा च गल्लां करन लग पिया, बस सिखां नू इन्नी कु गल समझ आई डाढ़ी प्यास डाढ़ी प्यास, और घोड़ा हवा विच गल्लां करन लग पिया, पलक झलक विच घोड़ा पहुंच गया, जाके घोड़ा खिला रिया, घोड़े तो हेठां उतरे वेख्या दोवें प्यो पुत्र मूर्छित होए ने, नीम बेहोश ने, पानी दी टिंड लई उहदे विचों थोड़ा जल लिया, छट्टे मारे दूआं दे मूंह उत्ते होश आई, दूआं ने नमस्कार कीती सतगुरु कृपा करो पहला जल रसना लायक करो बाकी बचन फिर करांगे। हजूर ने जल छकिया, जल छका के फिर दूआं प्यो पुत्रां ने आप जल छकिया, फिर सतगुरु जी ने सात संगत उहनां नू वरसाया, आख्या तुसी अपने नां ते नगर वसाओ। उदू मगरों फिर हजूर ने ऐसी कृपा बख्शिश कीती, अज तुसी उस बैल्ट विच जाओ भाई रूपा भाई की समाध भगता भाई का 26-27-28-29-30 पिंड उन्हां भाइयां दे नां दे उत्ते उत्थे वसे जिहड़े

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

मंदर रंग रते रंग एका नानक जन का बिरत बिका अरका नाम जन को मुगत जुग तरके नाम जन का उत्रबत भुगत अरका नाम जन का रूप रंग हर नाम जबद का पर न भंग अरका नाम

बाहर पे एक अंतरमल पाया शब सनायक शकरे शपाया बाहर ज्ञान ध्यान शनान अंतर व्यापे रोब समान अंतर अगन बाहर तन स्वाह गल पाथर कैसे तरे अथाह जाके अंतर बासै प्रभु आप नानक तेजन सह समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गए लेहो ओड़ निभावे कहा बुझारत बुझे डोरा निस कहिए तो समझे पूरा।

पत जाए अष्टपदी। दस वस्तुले पाछे पावे एक वस्त कान बिखोट गवावे। एक पीना दे दस भी हेरले तो मूढ़ा कहो कहा करे। जिस ठाकुर से

काम क्रोध विकराल मिथ्या रथस्थी अशुभ वस्त्र मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आप शुभ्र कर्तु गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जब जब जीव हर के चरण मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरे मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिरुपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार गोदावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या

सा चितारी जिब्रसा तेरा सुंदर रूप सौभ्रभ सिमरो सदा अनूप जिब्रसा तेरी निकी जात सौभ्रभ सिमर सदा दिन रात जिब्रसा तेरी पत्र है गुरुप्रसाद नानक जस कह जिब्रसाद सुने करण नाद जिब्रसाद वेखे बिस्माद जिब्रसाद बोले अमृत रसना जिब्रसाद सुख सहज बसना जिब्रसाद हस कर चले जिब्रसाद संपूर्ण फले जिब्रसाद ब्रह्मगत पावे जिब्रसाद सुख सहज समावे

नानक जो भाव का सहज सुभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल ना लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन में प्रकाश जैसे धर भर आकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उचते उच्चा मन अपना सबते नीचा ब्रह्म ज्ञानी सहजन भये नानक जिन पर ब्याह भगरे ब्रह्म ज्ञानी सगल खीरी नाथ मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब पर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना भया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी ब्रह्म ज्ञानी बंधन दे मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन गया नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक प्रयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी परम कारु महा

निर्मलमंथ ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी का बल बल जाइय ब्रह्म ज्ञानी को खोजे में हिसर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर।

ब्रह्म ज्ञानी सर्वगा ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मत गौन बखाना है ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाना है ब्रह्म ज्ञानी का अंतरा पार नानक ब्रह्म ज्ञानी का सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीवा नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुगत जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष।

राजा स्वप्न मनोरथ ब्रिथे सब काजा नाम रंग सर्व सुख ए बड़भागी किसे प्राप्त होय करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करने आस के आद कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप रब सोए जो कि किनो

राष्ट्रपति संत का दुख ने हार जा घटाया, संत का दुख न जमते नहीं छुटाए, संत का दुख न सुख सब जाए, संत का दुख नरक में पाए, संत का दुख न मत होए मलीन, संत का दुख न सोबाते हीन, संत के हते को रखे न गोए, संत के दुख न थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग नंदक भी तरा, संत का दुख दे मुख पवाए, संतन का दुख न काग जो लवाए, संतन का दुखन सर्व जोन पाए, संत के दुखन तर्क जोन कृमाए, संतन का दुखन तृष्णा में जलाए, संत के दुखन सबको शलाए, संत के दुखन ते सब जाए, संत के दुखन नीच नीच आए, संत दुखी गाथाओं को नाहे, नानक संत पावे ता वही विगत पाए, संत का नंदक मात जाए, संत का नंदक घंट करना पाए, संत का नंदक मात हरा, संत का नंदक परमेश्वर मारा, संत का नंदक राज ते हीन, संत का नंदक दुखी यार दीन, संत का नंदक सर्व रोग, संत का नंदक सदा बिजोग, संत के नंदा दोख में दोख, नानक संत भावे था उसका भी हो मोख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी सह का नहीं मित, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्याग, संत का दुखी मां अहंकारी, संत का दुखी सदा भिखारी, संत का दुखी जन्मा मराया, संत की दुख ना सुख ते टराए, संत के दुखी को नाही ठाओ, नानक संत भावे था लय मिलाए, संत का दुखी अद बीते टूटाए, संत का दुखी कते काज ना पहुंचाए, संत के दुखी को ध्यान भरमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए,

दृष्टाराष्टपदी आप कथे आप सुन्ने हार आपे का विस्तार जात सभावित सृष्ट उपाय अपने पाणे लय समाय तुम ते भिन्न ही किशो आपन सु सब जगत परोए जागो प्रभु जी आप जाए सच नाम सोए जन पाए सो सम दर्शी दत का बेता नानक सगल सेठ का जेता जी जंदर सब ताके हा दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे सोए ना मारे सो मुआ जमनो बिसारे तिस्त अबर गां को

अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोविंद मन अंतर की उदरा चिंद आस अनत्यागो तरंग समझना की धूर मन मांगा आप छोट बेनती करो सा संग अगन सागर तरहो हर धन के पर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग पाज परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर ना बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के भजन अमलीक लाले रतन सुनत कमावत होत उदार आप त्राय लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जागा मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहत बाजय सुन सुन अंत करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल मांद कै माथे नानक उदरे तिनकै साथे शरण जोग सुन सरणी।

प्रभु की सतगुरु संत मीत सावधान गागर जीत सुखमनि सहित गोविंद गुण नाम जिसमन बसे सोत निदान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सबन होए सब देव जपाया स्थान बहुर न होवे आमन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सांत रिद नभ निध बुद्ध ज्ञान सर्वदय सिद्ध विद्या तब जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश सबके मत सकल देव दास सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कह मुख भने

तीर्थ नामा जे तिस भावा विन भाणे के नाए करी जेदी सेठियों पाई वेखा विन करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर मानक जेक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बजाई सबना जिया काई कुदाता सो मैं विसर ना जाई।

मन कोय मन सुरत होवे मन बुद्ध मन सगल पवन की सुध मन मोह चोटा ना खाय मन जम कै साथ ना जाय ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय मन बाग ठाग न पाए मन पास्यों पर गट जाए मन बागु ना चले पंथ मन धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय मन पावे मोख द्वार मन परवार साधार मन तर तारे गुर सिख मन नानक पवे न पिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय पंच प्रवान पंच प्रधान पंच पावे दरगह मान पंच सोह है दर राजान पंचा का गुरेक तिहान

असंख जाप असंख भाव असंख पूजा असंख तपता असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पख सार असंख मौन लेवलाय तार

आवह जाहु तीर्थ तप दया दत दान जे को पावै तिलका मान सुनया मनया मन कीता पाहु अंतर गाती।

जा करता सेठी को साधे आपे जाने सोई केव करे आखा केव सालाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सब को आखे एक दू

करहे बखियान। आखे भर में आखे इंद, आखे गोपी तै गोविंद, आखे ईश्वर आखे सिद्ध, आखे केते कीते बुद्ध।

देख को कह ना सकत केह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमतोज कहिजे कोट इंद्र इंद्रान साहे सहान गनिजय तिरपहम महीप सुर नर असुर नेत नेत बान त्रिन कहत त्वय सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत सुमत भजंग प्रयाशंद नवाह तवंग अकाले नवाह तवंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग रूपे नमस्तंग भेखे नमस्तंग लेखे नमस्तंग काय नमस्तंग जाय नमस्तंग गंजे नमस्तंग भंजे नमस्तंग नामे नमस्तंग ठामे नमस्तंग कर्मंग।

रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पाखत नित कोट सिमरत प्राण शास्त्र नाव ही वह चित माध पार शांत वे प्रसाद गुण गान उदार महिमा पार आसने भंग पमान अंग

चतुर्चक्र पुगते स्वयंभुक् सबं सर्वदा सर्वजुगते दो कालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदांग संगे पंगं विपुगते।

हुकुम बुझाए। सिमरत साह त्रिपुन पाप विचार दे, ततै सार न जानी, ततै सार न जानी, गुरु बाजो ततै सार न जानी, तिहि गुणी संसार भ्रम

देखा किता पड़तर कच्ची पक्की सारी है, जो आए सो चासी सब कोई आई बारी है, जिसके जी प्राण है बसाए मन वसारी है, अपने हथिया अपना।

नानक गुण गावो गावो गुण परम गुरु सुख सागर दुर्त निवारण शब्द सरे।

गाव हे इंद्राद भगत पहरलाद आत्म रस जिन जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो।